0: कर्म भाग गुर मेल मिलावै करे दात गुर सिख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुस दे।
1: तुस पाठ कस के करना जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण की।

बिन भगती नहीं सतगुर पाईऐ, बिन भागा नहीं भगत हरी, बिन भागा सतसंग न पाईऐ, कर्म मिलै हर नाम हरी, घट घट गुबत उपाय वेखै, प्रगट गुरमुख संत जना, हर हर करह सो हर रंग पीने, हर जल अमृत नाम मना, जिनका तख्त मिलै वडियाई, गुरमुख से प्रधान।

रहना सकौ दर्शन देखे बिन सहज मिलौ गुर मेल मिलाए रहौ एहो मन लोभी लोभ लुभाना राम विसार बहुर पछताना बिशरत मिलाए गुर सेव रांगे हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पाणी की ए देह शरीरा हमै रोग कठिन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा।

0: मन तन मौल्यो आत अनूप सुके नाही छाव धूप सगली रूति हरिया होय सद बसंत गुर मिले देव बिरख जम्यो है पार जात फूल लगे फल रतन भांत तृप्त अघाने हर गुण है गाय जन नानक हर हर हर त्याय बसंत महला
1: संगत जीओ। एक समय सिखा ने सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी दे पास बेनती की कि सतगुरु जीओ जिहड़ी होली है उहदा दिन है, होली मना रहे ने लोग, गुरसिखां नूं किस प्रकार होली मनाउणी चाहीदी है। सतगुरु जी ने शब्द दे विच बेअंत वार बड़े सुंदर बचन उचारण कीते ने कि होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव, सतगुर सेवाओ कर नमस्कार। उपर शुरू तो ही ये शब्द दे विच सतगुरु जी ने बड़े सुंदर बचन उचारण कीते ने, जो इस प्रकार गुरमत दृढ़ करवाई है सतगुरु जी ने कि लोकां वांगू नहीं जिवें रंग पाउणा जां कई गंदगी भी उपर पाउंदे हन, पर नहीं, सतगुरु जी कहिंदे कि संत जनां दी सेवा करके परमात्मा दी बंदगी करके ही होली मनाई जांदी है। हाँ जी,
0: बसंत महला पंजवा हट वाणी तन माल हाट कीत जुआरी जुए माहे चीत अमली जीवै अमल खाए त्यों हर जन जीवै हर त्याय अपने रंग सब को रचै जित प्रभ लाया तित तित लगै रहाओ मेघ समय मोर निरतकार चंद देख बिगसह कौलार माता बारिक देख आनंद त्यों हर जन जीवै जप गोबिंद सिंह रुचै सद भोजन मास रण देख सूरे चित उलास किरपन को अत धन प्यार हर जन को हर हर आधार सर्ब रंग एक रंग माहे सर्ब सुखा सुख हर कै नाय तिसह प्रापत एहो निधान नानक गुर जिस करे दान बसंत महला पंजवा तिस बसंत जिस प्रभ कृपाल तिस बसंत जिस गुर दयाल मंगल तिस कै जिस एक काम तिस सद बसंत जिस हृदय नाम गृह ताके बसंत गनी जाके कीर्तन हर धुनी रहाओ प्रीत पार ब्रह्म मौल मना ज्ञान कमाइए पूछ जना सो तपसी जिस साध संग सद ध्यानी जिस गुर है रंग से निरभाओ जिन भाओ पया सो सुखिया जिस भ्रम गया सो एकांति जिस हृदा थाय सोई निचल साच ठाय एका खोजै एक प्रीत दर्शन परसन हीत चीत हर रंग

जीवा प्रभ प्रीतम मेरे संग राय, जिसे देख हौ जीवा माय, जाके सिमरन दुख ना होय, कर दया मिलावो तिसे मोहे। मेरे प्रीतम प्राण आधार मन, जियो प्राण सब तेरो तन रहाओ। जाको खोज है सुर नर देव, मुन जन सेख ना लह पेव, जाकी गत मित कही ना जाए, घट घट घट घट रह समाए। जाके भगत आनंद मै, जाके भगत को ना ही खै, जाके भगत को ना ही पै, जाके

एक सर्वकला प्रव तुम प्रवीण अंत न पाव है जल है मीन अगम अगम ऊच है ते ऊच हम थोरे तुम बहुत मूच जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से धनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस आराध जिन जियो दिया तिसका चाकर हो हे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोतदारी फिर दुख ना लागे।

0: ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਲਗਵਾਇਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਭੇਟਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਗ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਐਵੇਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਧ
1: 1550 KRPI ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਰੀ।
2: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
3: ਅਕਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਤ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਜੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਬ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਭੂ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਜਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ज्ञान भी ईश्वर तो है, परमात्मा तो है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते ने, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आदि गुरु वेदा ने भी परमात्मा नो ही मने है, वो ही गुरु है। अगर मोहम्मद साहब कहते ने ये आयतां मेरे ते नाजल हुई ने, मैंने उच्चारण की, खुदा दी तरफों नाजल हुई ने, तो इहदा मतलब ये ज्ञान खुदा ने दिता, फिर थोड़ा ते ना होया, क्योंकि नाजल जो हुई, अगर नाजल हुई ने तो फिर ये ज्ञान मोहम्मद साहब का नहीं है, ये तो खुदा का हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते ने, बोल मेरे नहीं ने, जैसे मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जैसे खसम दे बोल आए, मैं कह रहा जैसे जैसे खसम की बाणी आई है, मैं जगत दे सामने रख रहा, मेरे नहीं है। जे बोल सारे खसम देन तो ज्ञान सारा परमात्मा का, ईश्वर का है। और जे ज्ञान परमात्मा तो आ रहा है तो फिर परमात्मा गुरु है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, हां मेरा गुरु मेरा परमात्मा ही है। अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलिया सोई जियो, यही मेरा गुरु है। किसे तो ही मैं ज्ञान लिया। कंधार दे एक सूफी संत ने गुरु नानक ते प्रश्न किया है, रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है, इतना ज्ञान तुसी कितों ले, किस कोल पढ़े है, किसने सिखाया है। रहनुमाए तो कीस्त, थोड़ा रहबर कौन है। तो सतगुरु एकदम कहते ने, खुदाए मन, मेरा रहबर मेरा खुदा है और कोई भी नहीं, मेरा मुर्शद मेरा खुदा है और कोई भी नहीं, मेरा गुरु मेरा खुदा है और कोई भी नहीं। जन्म साखी दे बोलने, रहनुमाए तो कीस। कंधारी सूफी संत, कंधार देच एक बहुत वड्डा मकबरा है इस सूफी फकीर का, गुरु नानक देव जी महाराज सऊदी अरब इराक की यात्रा के समय इसे कंधार तो लंघते हुए इसे सूफी फकीर दे मेहमान रहे ने 15 दिन। इसने प्रश्न किया है, रहनुमाए तो कीस, थोड़ा रहबर कौन है थोड़ा गुरु। खुदाए मन, जैसे छोटे शब्दां च थोड़े बोलां च उस फकीर ने प्रश्न किया है, थोड़े ही बोलों सतगुरु जवाब पे देंगे। रहनुमाए तो कीस, खुदाए मन, मेरा खुदा ही मेरा रहबर और कोई रहबर नहीं, मैं सारा ज्ञान खुदा तो ले है। असी पैगंबर गुरु अवतार उन्होंने कहते हैं जो परमात्मा दे ए बोल सीधे पकड़ लें, सीधे ही पकड़ लें, उन्हां दी पकड़ दे सीधे आ जाने। ते जो अवतारा ते गुरुआ दे राही पकड़ के परमात्मा तक पहुंचन, असी उन्होंने भगत कहते हैं। ये भगत ने, इन्होंने अवतारा की बाणी सुन के, अवतारा को उपदेश लेके, पैगंबरां को शिक्षा लेके, उन्होंने बोलों जीवन का आधार बना के परमात्मा की प्राप्ति की थी भगत। ये सीधे परमात्मा के बोल नहीं पकड़ सके, जिन्हां ने पकड़े सन उन्हां नाल जुड़ के उन्हां नूं मन के ये पार उतरे ने। जो इस तरह सफलता नूं प्राप्त होया सी उन्हां नूं कहने हैं भगत। इतनी श्रद्धा सी, इतना विश्वास सी, अवतार दे हर बोल दे उत्ते भरोसा कीता, पैगंबर दी हर शिक्षा दे उत्ते विश्वास कीता, गुरु दे हर बोल दे भरोसा किया। और उस भरोसे ने उना बोलां दे सदके पुचा दिता भगत। पर ए बोल सिद्धे जिन्हां दी पकड़ दे चा गए खला दे, और ए बोल हर वक्त मौजूद ने। मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, ठाकर हमरा सद बोलन था, हर वक्त परमात्मा तो ये बोल आ रहे हैं हर वक्त। गुरु नानक दी पकड़ दे आ गए, कृष्ण दी पकड़ दे आ गए और महाभारत दे मैदान जंग दे। ये जो गीता है ये ज्ञान कुरुक्षेत्र दे जंग दे निकले है। अर्जुन दे प्रश्न और कृष्ण दे बोल, उन्हां बोलां नूं कहिंदे ने भगवान दे बोल, परमात्मा दे बोल, ते परमात्मा अमिट है। इत्थे कह दे कृष्ण अमिट है, शरीर ते सुपना सी रुखसत हो गया, वो बोल अमिट ने, वाकई गीता अमिट है, क्योंकि बोल ते परमात्मा दे ने, ईश्वर दे ने। कृष्ण आए चले गए, और वो जो भगवान शब्द का उच्चारण कर रहे सन भुलेखा पै गया अगे चल के, ये भगवान दे बोल ने, भगवान कह रहे हैं। मैं शब्द जोड़े है ऋषि वेद व्यास ने, क्योंकि गीता लिखती रूप देच उन्होंने जगत दे सामने रखी, श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं रखी। बस इतों थोड़ा जहा मुगलता पै गया। परमात्मा दे बोल कृष्ण जी ने पकड़े, ते कृष्ण दे इना बोलां नूं लिखती रूप देंदे ने व्यास, तो थोड़ी अपनी रंगण चाड़ गए। कुदरती गल है, अपनी रंगण चाड़ जाणगे। आपदी ग्यात लई अर्ज करा, एक कवि एक कविता बयान करे ते हुण कोई उसदे अर्थ करन लगे तो कुछ ना कुछ अपना रंग चाड़ जाएगा, कविता दे अर्थ भी कर जाएगा और कविता नूं कुछ अपने रंग भी दे जाएगा। लाजमी हू बहु वो नहीं हो सकती, ये भी मैं अर्ज कर दी। एक आम साधारण कवि दी कविता दी हू बहु उसे ढंग नाल व्याख्या नहीं हो सकती, तो कृष्ण ने जिहड़े बोल बोले अर्जन नूं समझाया हू बहु किस तरह लिख सकते सन व्यास, तो कुछ अपनी रंगत चाड़ गए ने। जिथे जिथे उन्होंने अपनी रंगण चाड़ी है उत्थे उत्थे एकदम गल प्रगट हो जाती है, नहीं कृष्ण इस तरह नहीं कह सकते। वक्त दा अवतारी पुरुष, महान ज्ञाता, और जिसनों मैदान जंग देच भी कहने की जरूरत है, ऐ अर्जन तू एक निमित्त है, तू करता नहीं है, तू जो ये कहना है ये मेरा गुरु ये मेरे भरा इन्हां नूं मार के मैं की खटना है, तू निमित्त है, तू कौन है मारन वाला, तू नहीं मार सकता, तू सुभाव दा क्षत्री है, सूरवीर है, और नहीं लड़ेगा तां भी तेरे दिल दिमाग दे ते ऐसा बोझ रहेगा, तेरे अंदर लड़ाई जारी रहेगी, करना ही पड़ेगा, तू करता नहीं है निमित्त है, पर अपना करतापन एक पासे कर दे, इस जंग दे च भी तू परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, युद्ध भी तेनू समाधि लीन कर देगा। अगर तेरा करतापन तेरे नाल है तो तेरा त्याग भी तेनू परमात्मा नाल नहीं जुड़न देगा, तेरा त्याग भी तेनू ईश्वर नाल नहीं जुड़न देगा, क्योंकि तेरा करतापन मौजूद होवेगा उत्थे। ये गहरी गल अर्जन दी पकड़ दे च आ गई, उन्हें सुट्टे शस्त्र फिर चुक लए, प्रभु मैं समझ गया, भगवान मेरी समझ दे चल गई, मैं पकड़ लिया थोड़े बोलां। जो परमात्मा दे बोलां नूं सीधा पकड़े अवतार, तो जो परमात्मा दे बोल अवतारां दे राही पकड़ सके भगत, श्रद्धालु, संत, भगत। अवतार जिस मात्रा दे जगत दे चाहुंदे ने उंगलियां ते गिण सकदे आ, भगत बहुत ने। हर कौम दे चोटी दे भगत काफी तादाद दे चोए ने। अवतार हर वक्त पृथ्वी ते मौजूद नहीं आउंदा, भगत हर वक्त आउंदे ने। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। जमीन दे ते हर वक्त अवतार नहीं आउंदे, अवतार उस समय आउंदे ने, कवि तुलसी कहंदे ने, जब जब होए धर्म की हानि, बाहणे असुर अधम अभमाने, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपा निद सज्जन पीरा। बहुत घोर अपराध पाप छा जाए तो ओ जैसे बहुत ही गर्मी बारिश नु जन्म दे देंदी है, इस तरह का घोर पाप किसी अवतार नू जन्म दे दे। परमात्मा दे सिद्धे बोल पकड़दा है ते जगत नू सुणदा है। और मैं ये भी अर्ज कर दिया किथे जगत अवतारा दे बोल नू पकड़दा है पूरा थोड़े जिहा फिर भी पकड़दे नू दे नाल रोशनी हो जांदी उसने नाल काफी ठरम्मा हो जांदा है। कलगीधर पिता भी इस तरह लिखते ने जब जब होए अरिष्ट अपारा दसम ग्रंथ जब जब होए अरिष्ट अपारा तब तब दे धरत अवतारा। उस वक्त कोई अवतार दे ही धारण करता है जब सारी सृष्टि देच अरिष्ट होवे भाव गलत होवे कुछ भी सही ना होवे तां फिर कोई ऐसा अवतार जो सीधा अकाल पुरख दे बचना नू पकड़ता है और जगत दे सामने रखता है। अवतारा दे राही गुरुआ दे राही जिन्हों की पकड़ दे चाह जाते हैं वह भगत वह गुरमुख वह ब्रह्म ज्ञानी। तो चूंकि बोल ते परमात्मा दे ने ज्ञान ते सारा परमात्मा दा है तो गुरु नानक कहिंदे ने परमात्मा ही गुरु है और कोई गुरु नहीं ईश्वर ही गुरु है वो जो एक है वो ही गुरु है। अखीर विच इस मूल मंत्र नूं जिस ढंग नाल समाप्त कर देने धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने प्रसाद है गुर प्रसाद प्रसाद और गुर ये दो मजमून अपने आप विच इस तरह दे ने थोड़ा जिहा मैं इन्हां नूं खोलना चाहुंदा ताकि ज़हन विच ये गल पूरी बैठ जाए। पता नहीं कितना सिख जगत भटक रहा है देहदारी गुरु चाहिदा है कि नहीं कौन दसे कदी देही भी गुरु आउंदी है अज है ते कल नहीं इहदा मतलब गुरु मिट जांदा है गुरु मर जांदा है ते जो मर जांदा है ओ गुरु सदीवी जीवन थानू किस तरह देवेगा किस तरह देवेगा। गुरु ते शब्द है गुरु ते ज्ञान है ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगाओ। किसे देही कोल भी जाओगे तो वो जो उपदेश कर रही है उपदेश नू हिरदे च वसाओगे कि उस देही नू जे आखो देही नू हिरदे च वसाना है तो उपदेश सुनन दी लोड़ ही नहीं की लोड़ है। ते जे उपदेश नू हिरदे च वसाना है ते तां ही हिरदा बदलेगा तां ते फिर देही दी कोई कीमत ही ना रहेगी। देही दा उतना ही सन्मान जिवें किसी ने कोई कपड़े पहने अवन ते कपड़ियां दी कदर कपड़ियां दा सन्मान बे फलाने दे कपड़े ने फलाने दे वस्त्र ने जिवें रुमालियां दा असी सत्कार करदे आं गुरु ग्रंथ साहिब दे रुमाले ने। पर हुण मैं अर्ज करां कि अखर ए वी रुमाले ने कागज़ ए वी रुमाले ने अखरां दे च जो ज्ञान है यही परमात्मा होरे दे चों गुरु नूं कढ़णा पैंदा मक्खण शाह लवाणा बनना पैंदा गुरु ते हर वक्त बोले च ये भी मैं अर्ज कर दे। बाई दे दारी गुरु बार बैठे सन ते हजारा लोग भुल जांदे सन उन्हां नूं मत्था टेक के वापस हो जांदे सन तसल्ली नहीं आउंदी सी किसे दी। मक्खण शाह लवाणा आया इहदे कोल अक्ख सी कहिंदा है रब दा कलाम अकाल पुरख दे बोल ते मैनूं किसे कोल नहीं दिखाई दित्ते। तो चलो ये साधक होणगे संत होणगे ये अवतार नहीं ने ये नहीं ने ये गुरु नहीं ने। चलो अभ्यासी होणगे गुरु होण दा दावा इन्हां दा झूठा है। तो चूंकि ये दावा झूठा है तो शायद इन्हां दी बंदगी भी झूठी है। जो इस तरह के झूठे दावे करन किस तरह सच्चे हो सकदे मक्खण शाह लबाणे दी सोच नहीं। बकाले देच एक हलवाई तो पुछदा इत्थे कोई होर भी है जो गुरु नानक दी गद्दी दा वारस होवे। उस हलवाई ने कहा सोडी बंश दा एक तेगा कमला है गुरु प्रताप सूरज दे जिस तरह लिखे है एक तेगा कमला है भोरे च रहिंदा है भोरे देच है बाहर नहीं आउंदा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਸਨ ਲਿਸ਼ਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਭੋਰੇ ਚ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਲਾ ਧੋਰੇ गुर ला धोरे जो मैं बोल सुने ने ए परमात्मा ने ईश्वर ने गुरु ते हर वक्त भौरे च ए भी मैं अर्ज करा अखरां दे भौरे च कढ़ना पैगा अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण वाण अखरां सिर संजोग वखाण इन्हां अखरां दे भौरे च कोई रब्बी जोत नूं कढ़े कोई गुरु नूं प्रगट करे जीवन विच परमात्मा ते गुरु नूं प्रगट करना पैंदा है। ए भी अर्ज मैं करा ना किधरे गुरु मिलदा है ना किधरे

विसन सार तुम देख दे हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। इधर शब्द ने अंदर प्रवेश कीता, इधर सारा संसार निरंकार दिखाई देता। इधर गुरु नु सुनिया, इधर अखां ने परमात्मा वेखना आरंभ कर दिता। अखां नु अजे परमात्मा नहीं दिखाई दिता, अखां ने अजे गुरु रूप परमात्मा नु सुनिया भी नहीं, क्योंकि गुरु वो जो बोल ने, वो जो शब्द ने परमात्मा दे ही ने। परमात्मा दे बोल ही अखां खोल सकते ने, जगत दे बोल, संसार दे बोल साड़ी अखां नहीं खोल सकते। ये भी मैं अर्ज करती, पर अखां खुल सकदियां ने अगर साड़ा मन पूरी एकाग्रता नाल सुने। और जिस दिन सुनेगा, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सुख सुनी। एक भी सिखिया सुन ली, एक भी पंक्ति, एक भी शब्द सुन लिया और अंदर वस गया, तो गुण पार प्रगट हो जाएंगे, दया प्रगट हो जाएगी, प्रेम प्रगट हो जाएगा, ज्ञान प्रगट हो जाएगा, आत्म दृष्टि प्रगट हो जाएगी, सारा संसार निरंकार दा रूप दिखाई देन लग पाएगा। इस तरीके नाल सतगुरु कहिंदे ने ओ गुरु है, अखीर विच कहिंदे ने ओ प्रसाद है। ए अवस्था उसकी बख्शिश नाल बनेगी, तेरी मेहनत नाल नहीं, उसकी रहमत नाल बने, तेरे प्रयास नाल नहीं, उसके प्रसाद नाल। अपने आप विच ए प्रसाद शब्द चूंकि बहुत गूढ़ भाव अपने विच छुपाई बैठा है, इस दा खुलासा कल दिन दे समय मैं थोड़े सामने करने की कोशिश करांगा। प्रसाद है, साड़ी मेहनत नहीं, उदी रहमत है, साड़ा प्रयास नहीं, उदा प्रसाद है। क्योंकि एक भी भगत ने ऐसा नहीं आख्या कि मेरे प्रयास नाल हे परमात्मा तू मैनू मिलिया है, मेरी मेहनत नाल मैं तेनू प्राप्त कीता है। कहिंदा नहीं, तू मिले है तेरी रहमत, मेरी मेहनत नहीं, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। लेकिन फिर भी भगत बहुत प्रयास करते हैं, अमृत वेले उठना है, जप करना है, तप करना है, नियम पूर्वक इशनान करना है, सब कुछ कर देना है। जिन्ने नाम ध्याया गए मुशक्कत गाल, बड़ी गाल ना गाल दे, बड़ी मुशक्कत कर देना है। पर मुशक्कत कर करके इक्को ही गल दा पता चलता है कि मुशक्कत नाल नहीं मिलेगा, बस इन्नी गल। मेहनत कर करके इक्को ही ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। प्रयास कर करके इक्को ही पता चलेगा एक गल दा कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा, वो जद मिलदा है उदा प्रसाद, वो जद मिलदा है उदी रहमत, उदी किरपा। साडा कर्म नहीं, उदी किरपा, साडा प्रयास नहीं, उसका प्रसाद, साडी मेहनत नहीं, उसकी रहमत। अगर मेरी मेहनत नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरी मेहनत उसकी कीमत है, इतनी मैं मेहनत करांगा मिल जाएगा, किसी नूं भी मिल जाएगा, फिर परमात्मा अमुल नहीं है। फिर ये शब्द कहने बनते नहीं, कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समा। तेरी कीमत नहीं है, तेरा कोई मुल नहीं है, मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है, मेरा अमृत वेले दा उठना तेरा मुल नहीं है, मेरा वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप करना तेरा मुल नहीं है, तीर्थां दा इशनान दान पुन सेवा ये तेरा मुल नहीं है, राम राम दा रटन ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले है मेरी मेहनत नहीं, तेरी रहमत। तू मिले है मेरा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद। पर जद मिले है प्रसाद ही है, जद मिले है उदी रहमत ही है, तो मेहनत करने दी की लोड़ है। यकीन जानो, मेहनत कर करके ही पता चलता है, नहीं पता चलता। मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इसनों इस तरह कहते हैं, गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, गाल नाल नहीं मिलिया, सेवा नाल नहीं मिलिया, दान नाल नहीं मिलिया, पुन नाल नहीं मिलिया, कोई दान करो।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय

0: ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਜਾਤ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਟੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਸੱਚੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ। ਤਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਾਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ, ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੇ ਅਹਿਨਸ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਮਾਣ। ਭਗਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਨਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਾਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਾਣੀ ਕੌਮ ਨਿਮਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਤਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਮਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਨਿਤਾਣੇ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਧਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਜ਼ੋਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਤਾਣ ਮਾਣ ਦੀਬਾਣ ਸਾਚਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭਟੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਦ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਣਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਆਣਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਧਕ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਧੂ, ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਸੇਖਾ, ਤਿਨ ਭੀ ਤਨ ਮੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा विष्ण नारद मुनि से कहा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दिया गहराइया नु समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोका नू समझाए दा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिड़ी भूल ब्रह्मा करदा है, ओही भूल विष्णु करदा है, ओही भूल शंकर करदा है, ओही भूल इंद्र करदा है, ओही भूल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दिया गहराइयां नू समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नू समझना किधरे बच्चियां दी खेड़ ना समझ लेनी। लोकी कहिंदे ना मन नू शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, मन नू शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लेने, किवें कर लेने? जिन्हां नू मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंज कहिंदे ने मन नू एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और वो कह रहे हैं जिन्हां नू मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नू एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नू एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा उही कह रहे हैं जिन्हां नू मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं। ओही कहिंदे ने मन नू एकाग्र करके कीर्तन सुनो, नहीं इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नू शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने ब्रह्मा विष्ण नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया। किसी होर ने नहीं ठगया, मन नहीं ठग लिया विष्णु नो, मन नहीं ठग लिया शिव जी नो, मन नहीं ठग लिया इंद्र नो। जो आम साधारण मनुख भूल करते ने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है इंद्र। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला, गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया, सहस शरीर चहन भग उवै तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है? मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है, क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है। ये उन्हां तिन्हां दी छाया है, काम दी छाया है मोह, लोभ दी छाया है मोह, हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध, मोह दी छाया है क्रोध, काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा, गुस्सा आउंदा। जिहड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा। और जिहड़ा हंकार नू पट्ठे पा दे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं, थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकदी, तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकदे। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने वो आप ही अपने मुंह चो सब कुछ प्रगट कर देने, कहने ज्ञानी जी असी ना होइए ते जलूस किवें निकलेगा, असी ना होइए ते स्कूल दे दरवाजे बंद हो जान, असी ना होइए ते गुरुद्वारे दा काम चल ही नहीं सकदा। मेरा एक ही जवाब होंदा, तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इते केती गई देखवाजे बजाए, वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनु कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा हंकार, फिजूल हंकार, फोका हंकार। तो जिहड़ा हंकार नू पट्ठे पा देवे उस ते मोह आउंदा है, चंगा लगदा है, प्यारा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उस ते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगदा है, चंगा लगदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उस ते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगदा है उस ते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उस ते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने, क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझना है, थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है, ये भी मैं अर्थ कर दें। और अंतरमुखी होए बिना कोई समझ भी नहीं आएगी। तो अंतरमुखी ओही हो सकेगा जो सुनदा है, ते सुनना ही ते कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदां ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना दा थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल इक्को ही है, ठिकाणा इक्को है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां दे दर्शन करन लई किसे देवते अवतार दी मूर्ति दे, सारी साधना अखां ते खड़ी है, वेखण ते खड़ी है, दर्शन ते खड़ी है, दर्शन करने ने, वेखना है। अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां, सारी साधना दर्शना ते खड़ी है। अज एक मंदिर दी कोठड़ी दे भगवान नूं वेखीए, फिर बाहर वेखीए, फिर सारा संसार भगवान दा रूप दिखाई देवे, साधना है, वेखना है, दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज, सारी साधना पढ़न ते खड़ी है, कुरान दी तलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, पढ़न ते खड़ी है। वेखण नालों थोड़ा जिहा पढ़ना इहदे वास्ते एकाग्रता चाहीदी है, थोड़ी जिहा। सिख जांदे ने गुरुद्वारे सुनन लई गुरु का शब्द, सारी साधना कन्ना ते खड़ी है, सुनन ते खड़ी है। वेखण नालों पढ़ना औखा है और पढ़न नालों सुनना औखा है, कठिन है। इस चक्कर च ना पैना कि असी इतने सारे बैठे हाँ, सारे सुन रहे हैं, कता ही नहीं, दो चारां तो ज्यादा कोई नहीं सुन रहा। सब अपने विचारां नूं सुन रहे हैं, सब अपनी सोचनी नूं सुन रहे हैं, सब अपनी यादां च महो, अंदर जो फुरने चल रहे हैं सब उन्हां नाल जुड़े हैं, कठिन है। अगर कोई सुने तो साहिब कहिंदे नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाते हैं, सुनदिया ही पाप नाश हो जाते हैं। सुनदिया ही गुरु का शब्द अंदर प्रवेश करेगा, सुनदिया ही गुरु की विचार अंदर प्रवेश करेगी, अंदरों अहंकार निकलेगा, अंदरों दुख निकलणगे, अंदरों संताप निकलणगे। सुनना ही तो औखा है, और सुन ओही सकेगा जिसका पूरा ध्यान एकाग्र होवे। इधर भटकदा पिया, इधर भटकदा पिया, उधर वेख रहा है, उधर वेख रहा है, इतों स्पष्ट है इहदा ध्यान भी भटक रहा है, इन्हें की सुनना है। सुनने लई ध्यान की पूरी एकाग्रता चाहिए है। एक मनुख उची उची बोल रहा हुंदा है, दूसरा सुन रहा हुंदा है, ते सुनन वाला अचनचेत कह देंदा, मित्र ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तू क्यों नहीं सुनी जब बोलन वाला इतनी उची उची बोल रहा है? तो कहिंदा मेरा ध्यान किसे होर पासे चला गया। बिना ध्यान की एकाग्रता तो सुनना कठिन है, और बिना सुनिया गुरु दे शब्द दा अंदर प्रवेश होना कठिन है। और शब्द दे अंदर दे प्रवेश होए बिना दुखां दा बाहर निकलना भी कठिन है। दुख ताही बाहर निकलणगे, संताप बाहर ताही निकलणगे जे शब्द अंदर प्रवेश करेगा। नानक भगता सदा विगार, सुनिए दुख पाप का नाथ। सुन के ही मनुख सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, नाथ बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है, दानी बन जाता है, इतना पावन हो जाता है कि 68 तीर्थ भी उस तो सदके कीते जा सकते ने। सुनिए 68 का इस्नान, इतना पावन हो जाता है, वो तो इतना पवित्र हो जाता है जे किधरे सुने। भोजन की बुरकी मुंह दे राही अंदर प्रवेश कर दी है, वो पच के मिंज बन दी है, खून बन दी है, मांस बन दी है, शरीर की शक्ति बन दी है, तवानाई बन दी है, इंद्रिया का बल बन दी है। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है, यही समाधि बनता है, यही आनंद बनता है, यही देवी गुण बनता है, यही परम शक्ति बनता है, यही रूहानी ताकत बनता है। पर शब्द ते कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा, और उदों प्रवेश करेगा जब कोई सुनेगा, और सुनेगा ओही जिसका ध्यान पूरा एकाग्र, नहीं तो कौन सुनता है। शौकिया लोकी अपने घर देच भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे दे च रखांदे ने उत्थे वड़ना ही भुल जांदे ने, किधर सुनना ना पै जाए, कौन सुनता है, कठिन है। मनुख पुत्र नू सुन सकदा है, मित्र नू सुन सकदा है, पत्नी नू सुन सकदा है, पति नू सुन सकदा है, गुरु नू सुनना औखा है, कठिन है। कारण गुरु दी गल, गुरु दी विचार साडे विचारां नाल तालमेल नहीं खांदी। साडे विचारां च काम, गुरु दे विचारां च राम। साडे विचारां च क्रोध, गुरु दे विचारां च दया। साडे विचारां च हंकार, गुरु दे विचारां च निरंकार। निर्माणता विनिमरता तालमेल नहीं बैठता। वाजे दी सुर एक पासे जाए, तबले दी सुर एक पासे जाए, कदन तालमेल नहीं बैठे, तालमेल नहीं बैठेगा। ताल तबला सुर ताल दोहां दा मेल ते बैठना चाहिए। सुर किसे पासे जा रही है, ताल किसे पासे जा रहा है। गुरु दे विचार कुछ होर, साडे विचार कुछ होर, तालमेल नहीं बैठते। और कहिंदे ने जिथे तालमेल बैठ जाए रस बनता भी उत्थे ही है, वरना रस नहीं बनता। और किसे दिन कीर्तन सुनदे आ किसे नूं रस आ गया, तालमेल बैठ गया। अवल ते मैं देखिया कीर्तन दा रस ते किसे नूं विरले नूं ही आउंदा है, लोक सुरां दे आवाजां दे अगले दे रंग रूपे च या व्यर्थ दियां साखियां च फस के रह जांदे ने, जिन्हां दा इतिहास नाल भी कोई मतलब नहीं, सच्चाई नाल भी कोई मतलब नहीं। मैं तो इत्थे तक देखिया इतनी नीवी लोगों की स्रोत, ये किस तरह गुरु नूं सुणनगे, ये किस तरह गुरबाणी नूं सुणनगे। ये बाणी बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए, सच दी विचार फोकियां साखियां नहीं। और जिहड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी, उस दी सच्चाई है कित्थे, हकीकत है कित्थे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करां, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश करदे ने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी, जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। ये ते पहली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहत है, वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है, वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखा मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आमदे, नवी आवाज, नवी चाल, और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने, और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग, आवाज अलग, चाल ढाल अगर, रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नू जे 1,000 फल लगे ने, 10,000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1,000 अंब एक दरख्त नू लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने तो एक जैसे ने, कदाई नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दिच आवे भावे ना आवे, वो फर्क साढ़े तौल दिच आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा दे च रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाण लग पाया तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज साड़ी पकड़ दे साड़ी समझ दे आ गए ने, इतने। इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग। सूरज घट रहा है एक दिन मिट जाएगा, चंद्रमा घट रहा है एक दिन मिट जाएगा, धरती घट रही है एक दिन मिट जाएगी, मनुख घट रहा है एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बढ़ता है घटता है ते मिटता है। ये तिन्ने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारियां ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं ते अपनी जवानी हंडा चुके है, बुढ़ा हो गया। 40 लख टन वजन एक सैकंड दे चिसदा घट रहा है। घटंत दीपंग घटंत रूपंग घटंत रव सस निखत्र गगनंग, गुरु अर्जन देव जी महाराज ये घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नूं महापरले कहिंदे ने। एक ब्रह्मंड दी परले, एक ब्रह्मंड दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे, भावे अरबा खरबा इहदी साल उम्र है लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है घटदी है मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दौरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता। वो तो नित नवा है, उस तो जो कुछ भी आंदा है नित नवा ही आंदा है। बहुत लंबे चौड़े पसारे नू ना लईए, लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवी आवाज लेके, नवा रूप लेके, नवे नैन नक्श लेके, नवी अंगूठे दी छाप लेके, नवी उंगलियां दी छाप लेके। हर बच्चा अलग है, एक जैसा दूसरा नहीं है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। सब कुछ अनेक है, वक वक है, पर इस सारी अनेकता दे रमया होया एक है, एक है। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, और तू एक होंदा होया अनेक है। ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों होया? धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहते ने एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या ते बच्चे खेड़ देने, खेल या परमात्मा खेड़ दे, बाकी खेल नहीं है। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਓਲੰਪਿਕ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਹੈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਖੇਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਗਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਧੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਤਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਤਈ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਘਿਰਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਫੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ ਖੇਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਪਏ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਰੇਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਨ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਲ ਹੈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਲ ਸੀ ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਲ ਜੰਮਣਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਨਫਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬੁਢੇਪਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰੂਪਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਸੇ ਰੋਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੂਲ ਖਿਲਤਾ ਹੈ ਮੁਰਝਾਨੇ ਕਾ ਤਖੈਲ ਲੇਕਰ ਜਿੱਥੇ ਹੱਸਤਾ ਹੁਆ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਗਾ ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜੋ ਹੈ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਰਨ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਜਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਏਕ ਹੈ ਜੈਸੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਝਰਨਾਟ ਵੱਜੇਗੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਗਣਗੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭੇਦ 'ਤੇ ਮਿਟ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਅਨੇਕਤਾ ਉਸਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਰਨਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੈ ਲਹਿਰਾਂ ਅਨੇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੂੰ ਪਾਵਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ भट्टा ने इस संबंध च एक सवैया उच्चारण किया, कह के मैं समाप्ति करा एकाग्रता बख्शने। और धन गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा दे भट्ट फरमान करते ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़े हो एक, मन धरे हो एक, कर एक पछाणे हो। हे गुरु अमरदास तुसी जीवन भर पढ़िया ते एक नू पढ़िया, दो तीन चार पांच नहीं, एक। सिर्फ एक नू पढ़िया ही नहीं, मन विच भी एक नू वसाया। धन गुरु नानक देव जी महाराज भी कहिंदे ने, दुबदा ना पढ़ो, मैं एक तो बिना दूजा नहीं पढ़न तैयार, दूजी तीजी गल मैं सुनन नू तैयार नहीं, पढ़न नू तैयार नहीं। दुबदा ना पढ़ो, हर बिन आवर ना पूजो, मड़ी मसान ना जाई, तृष्णा राच ना पर घर जावा, तृष्णा नाम बुझाई। मैं नहीं दुबदा पढ़ता। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास तैं पढ़ियो एक, तुसी जीवन भर पढ़िया एक नो, सिर्फ पढ़िया ही नहीं, मन विच वसाया एक नो, तैं पढ़ियो एक, मन धरियो एक, कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए न जाणियो। थोड़ी अखां च भी एक है, जिथे तक वेखदे हो एक नो, थोड़ी जबान ते भी एक है, जिन्ने बोल बोलदे हो उन्हां च एक प्रगट आउंदा है, अनेकता नहीं, दुबदा नहीं। थोड़ी जबान ते भी एक, थोड़े अखां विच भी एक। आखिर धार्मिक मनुख की पहचान किस तरह करोगे, उसके व्यवहार तो, उसके बोलन तो, उसके वेखण तो, उसकी तर्ज जिंदगी तो, और किस तरह हो सकता है। गुरुद्वारे आने वाला भी अधार्मिक होवे, हो सकता है मंदिर विच रोज पूजा पाठ करने वाले का भी कोई भगवान नाल संबंध ना होवे। व्यवहार तो पता चलेगा, उसके आचरण तो पता चलेगा कि इहदे जीवन विच निरंकार प्रगट होया है कि नहीं। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास फड़ी रसना ते इक, फड़े नेत्रां दे चिक, नैण बैण मोह एक, एक दोए ठाए ना जाने। तुसी एक तो बिना दूजे नू नहीं जानदे, थानू एक ही एक दिखाई देंदा, सारियां किरणां दे इक्को ही सूरज दिखाई देंदा है, थानू सारी लहरां दे इक्को ही सागर दिखाई देंदा है, थानू सारी अनेकता दे इक दिखाई देंदा है। भट्ट गुरु अमरदास जी महाराज की उपमा करदे होया अगां चल के कहिंदे ने, सुपन एक पर तख एक, एक समय लीने हो। हे गुरु अमरदास तुसी जागदे रहिंदे हो, एक दे च लीन रहिंदे हो, पर जब तुसी सौ जांदे हो तुहानू सुपने भी एक दे ही आउंदे ने, तुसी सुपनियां दे च भी एक दे च लीन रहिंदे हो। थोड़ी जागृत अवस्था एक नाल जुड़ी हुई है, थोड़ी स्वपन अवस्था भी एक नाल जुड़ी हुई है। सुपन एक पर तख एक, एक समय लीने हो, तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस ने खेणे हो। ये सारे हिंसे जमा करने पैणगे, जोड़ करना पेगा, तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस ने खेणे हो, तीस एक इकती पंच छत्ती ते पैंती इकहत्तर। हे गुरु अमरदास ये अवस्था थोड़ी इकहत्तर वरे की उम्र दे बनी, इकहत्तर साल की अवस्था दे ऐसा जीवन आप नू नसीब होया। तीस एक अर पंच सिद्ध पैंतीस ने खेणे हो, इको जे लाख लखो अलक है एक एक कर वरने हो, गुरु अमरदास कव भल भण तू एक लोड़े एक मने हो। कवि भल भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अमरदास मैं सच कह रहा, थानू एक दी लोड़ है, तुसी एक नू मनदे हो, एक नू वेखदे हो, एक नू बोलदे हो, एक नू पढ़दे हो, और एक नू मन दे च वसाया। थोड़ी जागृत अवस्था दे चिक, थोड़ी स्वपन अवस्था दे चिक, तुसी इस गल नू समझ लिया है कि एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू कोई समझ जाए, एक नाल कोई जुड़ जाए, वही पवित्र है, बाकी कोई पवित्र नहीं। क्योंकि उन्हों सारिया लहरां दे सागर दिखाई देगा, उन्हों सारिया किरणा दे सूरज दिखाई देगा, उन्हों सारे मनुखां दे प्रभु दिखाई देगा, उन्हों सारे पशु पक्षियों दे ईश्वर दिखाई देगा। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, ए विसंसार तुम देख दे, ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। ए अवस्था जिस दी बन जाए ओही पावन है, ओही पवित्र है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, तू एक होंदा होया अनेक है, और अनेक होंदा होया एक है, अनेकता तेरा खेल है, अनेकता तेरा तमाशा है, ते बस मैं यही तमाशा देखने लिए आया। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। अजीब है तेरा तमाशा, देख रहे हैं। एक सूफी दा कहना है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कलब से खुदा खुदा कर जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। उसका तमाशा है, इतने होवेगा। तू वेखण वाला बन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, इस तमाशे दे बड़ी भारी अनेकता है और ये अनेकता उसका तमाशा है। इसी अनेकता दे जिसनू एक दी समझ होवे, एक दिसे, एक रसना ते आ जाए, एक हिरदे च वस जाए, वो ते पावन है, वो ते पवित्र है। बाकी सारे दे सारे अपवित्र ने। एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा पहला अक्षर एक, एक तो गुरबाणी आरंभ होंदी है, ते सारी गुरबाणी एक दा ज्ञान करांदी है। जो एक नाल जुड़ गया बस ओही ब्रह्म ज्ञानी, ओही भगत, ओही संत, ओही फकीर, ओही वली अल्लाह, ओही अवतार, ओही महापुरुष और ओही पावन, ओही पवित्र। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिश करन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे इस थंद दी विचार सरवण करदे आ, आप नू एक दी समझ पवे और सिर्फ समझ ही ना पवे, सारी अनेकता दे एक दिखाई देवे, ताकि कथा सुनी हुई दा लाभ सड़ी झोली दे पै जाए। साहिब रहमत करन, सुन के थानू आनंद मिले और सुना के मैनू एकाग्रता नसीब होवे। कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। सारे दा हार्दिक तौर से धन्यवाद। बड़े टिकाओ नाल एकाग्रता दे नाल आपने गुरबाणी विचार नू जो है सरवण कीता। कल फिर इसी समय दास आप जी दे चरण परसेगा। पहले दास दे नाल आए हुए साथी विचारां ते कीर्तन सरवण कराणगे, उस तों बाद दास गुरबाणी विचार आप जी दे सामने जो है पेश करेगा। साहिब रहमत करन। इसे तरीके नाल संजोग बनाई रखन, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, सानू विश्वास आ जाए, भरोसा आ जाए। एक नलका इत्थे भी लगा है, एक नलका बाबा तुलसीदास जी दे हत्थां दा दौले आल भी लगा है। संगत शायद हरियाणे तो आए ने गुरमुख प्यारे, गल अंदर विश्वास दी है, भावना दी है। जदों विश्वास रख के चलो वह सब कुछ वर्तद है। एक दिन वे सैकड़े केस सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब वरतते ने। जिदन कोई विश्वास न गुरु के दर से आंदा है, यह सच है कि कर इनान सिमर प्रभ अपना मन तन पै अरोगा, कोट बिगन लाथे प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोग। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में लाहौर तो वजीर आ गया है। इतिहास कहिंदा वह वजीर खान ने उन्हूं साई मियां मीर जी ने कल्या। वह आके गुरु अर्जन देव महाराज जी जिथे बाबा बुढ़ा साहब की वेर है पातशाह उत्थे बह के हरिमंदर साहब की सेवा करवा रहे थे। हाथ जोड़ के आके कहिंदा जी मैनू एक रोग है, मेरा भला कर दिओ, मैनू साई मियां मीर जी ने कल्या। पातशाह ने बड़ा अदब किया, क्यों साई मियां मीर जी ने कल्या? किसी अफसर दे कोल एक उहदे अफसर दूजा कोई बंदा भेजद, ऑफिसर उहदा सन्मान करद, किसी दूजे अफसर ने भेजे है भाई। साई मियां अमीर जी ने अपने हथी श्री हरिमंदर साहब जी की नींह रखी है, पातशाह ने माण दिता है। अज जदों वजीर खान कल्या, हजूर बड़े अदब नाल कहिंदे दसो की रोग है? वह कहिंदा जी मेरे पेट विच फोड़ है, जलोदर का रोग है, ठीक नहीं हो रहा। श्री गुरु अर्जन देव महाराज बोले कहिंदे जिहड़ा बजुर्ग तुरिया आउंदा ना चिट्टे दाड़े वाला, उहदे हत्थ विच टोकरी है, हरिमंदर साहब की सेवा चलती है, वह मिट्टी की टोकरी सुट के आउंदा, उस बजुर्ग नूं जाके कहो वह तुहाडा रोग ठीक करेगा। वजीर खान दे मन च आया वी शायद वह बजुर्ग कोई बैद बूद रखिया होना, गुरु अर्जन देव महाराज ने दवाई दारू दिंदा होना है, बजुर्ग है गुरु अर्जन देव महाराज ने कोई बैद रखिया होना है, दवाई दारू दिंदा होना है। दो तीन नाल अहलकार ने वजीर खान उधर नूं तुर पिया, ते जाके हथ जोड़ के बाबा बुढ़ा साहब के मूहरे खड़ गया। कहना जी गुरु अर्जन देव महाराज जी ने तुहाडे वल कल्या है, मैनू रोग है जलोदर का, ठीक कर दिओ, मैनू दवाई चाहीदी है, मैनू जलोदर का रोग है, ठीक कर दिओ, गुरु अर्जन देव महाराज ने तुहाडे कोल कल्या है। बाबा बुढ़ा साहब ने हाथ में टोकरी पकड़ी है, जोर नाल टोकरी मार के धक्का दे के परे करके कहा, ओए दाते नूं छड के मंगते कोल की लेना है, देण वाला तो दाता बैठा है, दाते नूं छड के मंगते कोल की लेना है। धक्का मार के टोकरी ना बाबा बुढ़ा साहब अगे लंघ गए, पेट का फोड़ा ए हाथ रख के पेट फड़िया, दर्द हुंदे पीड़ा नाल तड़फदा वजीर खान फिर गुरु अर्जन देव महाराज कोल आया। बाबा बुढ़ा साहब की वेर को आके कहना महाराज वह बजुर्ग तो बहुत गुस्से विच है, उन्हें तो टोकरी जोर नाल मार के कहा दाते कोलों मंग जाके, मंगते कोल की लेना है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज हस पे, कहने वजीर खां बाबे बुढ़े ने तेनों टोकरी मार के परां करके कहा दाते कोल जा, मंगते कोल की लेना है, जेड़े हाथ नाल बाबे बुढ़े ने टोकरी मार दिती है हुण तेरा रोग हट गया है। बाबे बुढ़े दे हाथ एवें नहीं, उहदे हत्थां च बरकत भरी है, उहदे कदमां विच करंती है, उहदे बोलां विच करामात है, उहदे हत्थां विच बरकत है, जेड़े हाथ नाल टोकरी मारी हुण रोग हट गया है। साध संगत जपन वालियां दे हत्थां विच बरकत है, कदमां च करंती है, बोलां विच बरकत है। ताइयों गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सिखो बाबे बुढ़े वर्गा कोई गुरसिख बंदगी वाला मिल जाए चरण धूड़ मंगया करो, क्यों एहो जे जपन वालियां दी चरण धूड़ नाल ही पाप उतर जांदे ने, एहो जे जपन वालियां दी चरण धूड़ी नाल ही पापियां दा उद्धार हो जांदा है। यह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का फरमान है। आ पंक्ति पढ़ो, गुरसिखी भाणा मन्निया गुरपूरा पार लंघाए, गुरसिखां की हर धूड़ दे हम पापी पी गत पाहे। बहुत ही सन्मान योग श्रीमान संत बाबा गुरचरण सिंह जी ठठे टिब्बे वाले
जो श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी उन्हां दी सेवा उत्ते सेवा निभा रहे ने। पटना साहब तुसी श्री हरिमंदर तख्त श्री हरिमंदर पटना साहब दर्शन करन जांदे हो, वो तख्त साहब की सेवा भी श्रीमान संत बाबा करतार सिंह जी ठठे टिब्बे वालियां करवाई। कदे दीवान हाल मंजी साहब तुसी दर्शन करियो जिथों रोज़ लाइव कथा आउंदी है दरबार साहब तो तुसी सुनदे हो। वो मंजी साहब का दीवान हाल किड्डा वड्डा उहदा साथ संगत बाया है खेत्रफल है। जदों बाबा जी बनाउण लगे कहिंदे जी गुरु अर्जन दे महाराज दा मंजी साहब स्थान बनाउणा है, इहनूं सहारा नहीं कोई देना, इहनूं पिल्लर नहीं कोई देना। वह कहिंदे जी बिना पिल्लर तो थोड़ी ऐ लेंटर टिक जाऊगा। कहने भाई जे गुरु का स्थान भी हुण पिल्लरां दे सिर ते खड़ा करना है फिर की फायदा, ये बिना सहारे तो बिना पिल्लर तो जाइए। वो जिहड़ा इंजीनियर वो कहना जी इदा नहीं हो सकता, इहदा वाया बहुत वड्डा है, इहदे विच पिल्लर देने पैणगे। आ वेखो हुण एडा हाल बनाया आपां पिल्लर दित्ते ने, सेफ्टी वास्ते पिल्लर चाहीदे ने। ते महापुरश कहिंदे नहीं इह गुरु का स्थान है, इच पिलर ना दिओ। सैडा तो बीम चके ने, तुसी पूरा मंजी साहब दीवान हाल दे दर्शन करियो, उहदे विच साध संगत अंदर पिलर नहीं है गब्बे। साधु जिहड़ा वो आर्जीटैक्टां दा आर्जीटैक्ट हुंदा, इंजीनियर तो पर इंजीनियर है, इंजीनियरां दी किताबां दी पढ़ाई है, साधु दी पढ़ाई जिहड़ी वो व्याख्या च नहीं आ सकदी। बहुत प्यार नाल उहनां दे सेवादार आए ने, बाबा जी आए ने। आओ अपना सारे श्रीमान संत बाबा तुलसीदास जी उन्हां दी याद विच बैठे हो। समा समाप्त हो गया, जथा पहुंच गया, अपना एक पंक्ति सारे मिलके पढ़िए। गुरसिखी भाणा मन्या गुरपूरा पार लंघाए, गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए। जिहड़ी आपां पहलां पंक्ति पढ़ी, आपां बंदगी नहीं कर सकते, तप करन वाले बंदगी करन वालियां दे स्थान ते इस लई आईदा है। उन्हां दी बंदगी तो बलिहार जाइए, साडा भी जीवन जन्म सफल होवे। सारे चित जोड़ के धारना पढ़ो प्यार नाल।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमले लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्व को सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर्थ एक
1: ज्यों बसदा को खुदे को चिंतन ले
0: ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ
1: नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
1: जैसे तर ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे
1: नानक जन प्रभु आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी का होय सुफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म

दो मासूम बच्चों नूं दीवारां चिणिया जा रहे, ये थोड़े आउंदे ने, कल्ला आउंदा ते कल्ला भी हर शहर दे च नहीं आउंदा। मैं एक दफा फिर दोहराण लगा, हर शहर दे चोटी दे धनवान होणगे और उन्हां नूं माण भी मिलेगा धन करके। हर शहर दे चोटी दे कारोबारी होणगे, हर शहर दे च दार्शनिक फिलोसफर कलाकार भी होणगे, हर शहर दे च राजनीतिक होंदे ने, साइंटिस्ट होंदे ने, हर शहर दे च लॉर कानून नूं समझण वास्ते समझण वाले वकील भी होणगे और होंदे ने। हर शहर दे च ब्रह्मज्ञानी नहीं आउंदा, हर शहर दे च संत नहीं आउंदा, हर शहर दे च कोई रब नाल जुड़ी हुई आत्मा नहीं आउंदी। अगर होंदी ते सानू अरदास च शब्द ऐड करन दी लोड़ नहीं सी, हे गुरुदेव रहमत कर, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते, तेरी याद बने। बहुत औखा है मजमून गुरु नूं समझना समझाना, प्रभु नूं समझना समझाना, बहुत बारीक मजमून है, अति सूक्ष्म मजमून है, अति सूक्ष्म। इस वास्ते चोटी दा साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच सकिया उत्थे जिथे एक भगत पहुंच जांदा है। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोए, कोई सूरबीर, कोई छतरपति राजा, कोई चोटी दा ज्ञानी, कोई चोटी दा दार्शनिक ते साइंटिस्ट उत्थे नहीं पहुंच सकदा जिथे भगत पहुंच जांदा है, जिथे ब्रह्मज्ञानी जो है पहुंच जांदा है। तो मैं फिर अर्ज करा, दर घर की सौजी ना है, घर है परमात्मा, दर है गुरु। और दर घर नालों अलग नहीं आउंदा, उसे नू दर कहिंदे जो घर दे नाल लगे होवे। ते घर दे च जाना है दर दे चो लंघना पएगा, दर दे च लंघ के घर दे च प्रवेश मिलेगा। दो शब्द में कहां खुलासा, फिर जो प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है, ओही शब्द दे रूप दे च गुरु है, और जो शब्द दे रूप दे च गुरु है ओही प्रकाश दे रूप दे च परमात्मा है। और जो प्रकाश दे रूप दे च घर है ओही शब्द दे रूप दे च दर है, और जो शब्द दे रूप दे च दर है ओही प्रकाश दे रूप दे च घर है। जो परमात्मा दे रूप दे च घर है ओही गुरु दे रूप दे च दर है, और जो गुरु दे रूप दे च दर है ओही परमात्मा दे रूप दे च घर है। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च भेद नहीं है, ते जे भेद ही नहीं है तो फिर दो नाम क्यों ने, ए गुरु ए प्रभु, ए परमात्मा ए गुरु है। अगर भेद नहीं, दोवें एक ने, तो फिर दोहां दा नाम एक होना चाहिए। दो नाम ने, दोहां दियां क्रियावां वख वख ने, तो फिर दो हस्तियां होनियां, दो हस्तियां नहीं ने। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुरु नाई भेद। पार ब्रह्म ते गुरु दे च कोई भेद नहीं। दर घर नू लगे होया, घर दर दे नाल जुड़े होया, प्रभु गुरु दे नाल जुड़े होया, गुरु प्रभु दे नाल जुड़े होया। इंज दर घर दे नाल जुड़े होया, घर दर दे नाल जुड़े है। सो दर के हा, सो घर के हा। इस दर तक साडा तन जाएगा कतई नहीं, कतई नहीं, तन जा ही नहीं सकता। निराकार दे देश ए आकार तन नहीं जा सकता, निरंकार दा देश जेदा कोई आकार नहीं, चक्र नहीं, चिन्ह नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, ए तन नहीं जा सकता, तन ते इत्थे रह जाएगा। निरंकार दे देश साडा मन जा सकता है, साडा मन जा सकता है।

नमो सर्वमाने समस्ते नदाने नमो देव देवे भेखे भेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्व गावणे नमो सर्वभावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूप परभंगी परमाथे समस्ते विभूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूप नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे नमो योग योगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायण कुरूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सह सहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तोले निवासी सदा सिद्ध द बुद्ध द बृद्ध कर्ता अधो उर्ध अर्धं अगं उगहर्ता परम परम परमेश्वरं परोच्छ पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अच्छेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तताम।

नंदी स्वरूप है नमो सर्वमाने समस्ते निधाने नमस्तवं नरनाथ है नमस्तवं परमाथ है नमस्तवं गंजे नमस्तवं पंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीज अखिज अभिज समस्तंग प्रसिज्य कृपालंग स्वरूप को कर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद सिद्धंग निवासी चारपट संत प्रसाद अमृत कर्म अमृत धर्म अखल जोगे अचल भोगे अचल राज अटल साज अखल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग।

गोबिंदे मुकंदे उदारे पारे हरियं करियं नरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न करमंग न काया जन्म अजाय न चित्र न मित्र

छंद नम सूरज सूरज नम चंद्र चंद्र नम राज राजे नम इंद्र इंद्र नम अंधकार नम तेज तेज नम बृंद बृंदे नम बीज बीजे नमो राज संग ताप संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग अतत्ंग स्वरूपे नमो।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सोतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल को निंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करिमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भूत

पाए पधारे। जीत भरा सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे। गुंजत गूढ़ गजार के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भवैख भवान के भूपत कौन गण नह जात बचारे। श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम।

तमतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार हिसार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाच करे सो एक दवैया दानव देव फनेन्द्र निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं तल मैं पल ही पल मैं सब थाव थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन कहे बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब

हमरे दुष्ट समय तुम कावहो आपात द मोहे बचावहो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सेख समय करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सा बैरन को आज संगरिये पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा।

निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी, कूड की सोय पहुचै नाही, मरसा सच समाणी, जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै तो सनमुख सिख कोई।

0: विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रंगे फिर हैं जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड से।

साहिब एक तू जिन सचो सच बरताया जिस तू दे तिस मिले सच तनी सच कमाया सतगुण मिला सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच ना जाने मनमुखी जन्म गवाया।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम ना होय, तू करता करना मैं नाही जा हम करी ना होय, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखेरा, जात मैं जोत जोत मैं जाता कलकला भरपूर रहे, तू सच्चा साहिब।

जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझता है सतजुग रसन तो का धर्म गैर थवा त्रेतरथ जत का।

करे तो साई कार कराए छी सो सेवक सेवा करे सो हुक्म नाए छी हुक्म ने होवे परवान ता खसमे का महल पाई छी खसमे पावे सो करे मन चुंदिया सो फल पाई छी ता

नानक कूड़ रह भरपूर मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरों है प्रवान मलेस धान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा का।

के हर हर हरे। मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां विचों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान हौमे एहा जात है हौमे कर्म कमाए हौमे एही बंदना फिर फिर जौने पाए। हौमे दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेट विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे हैं हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवन विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी देखते हाँ हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग। होने रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। ये रोग बंधन दा कारण बनदे ने ये रोग दुख दा कारण बनदे ने और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थां दा अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है जोवन जवानी स्वप्न दे आधार से खड़ा होंदा है और शक्ति सता
ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रभता के मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जो बनवंत होवे या जो बन दी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालत पागल हो जाता है। सता पागल कर देती है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पन की सीमा तक ले जाता है, पर जो बन का चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचा देच है, विचारा देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा, उच्चा समझदा, सब तो उच्चा समझदा। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस भी महफिल देख खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम,
ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है। ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कहु कुनीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी। कह रविदास सभे नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। इत सारे भूल के पागल हुए फिर देने कौन, हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होता है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होता है, क्योंकि अवगुणा के आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदिआं भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना वेद। इकद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत दा ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहन। अक्षर दा कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत दा कोई बोध नहीं, किसे धर्म ग्रंथ दा कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी का मस्तक, अहंकारी की चाल स्पष्ट रूप में अहंकार की प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहते हैं, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारे दिया निगाह मेरे ते आन, सब मैनू ही देखन।
चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेड़े। तू है कि हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी। और किया तू हड्डियां दा मान, जोबन जवानी दा मान, हड्डियां दा मान, मांस दा मान, मिंज दा मान, और खलड़ी दा मान। इस तो अलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा, पर्स मानक देहं मलिनं, मजा रुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां, फुल्ला जैसियां पवित्र वस्तुआं, मनुखी तन नाल छूंदियां, स्पर्श करदियां, मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। है कि दुर्गंध, खून, मिंड, मांस, कलड़ी। अज्ञानी एवं तन दा अहंकार करदा, जो बंदा अहंकार करदा है, फिर धन दा अहंकार। धनवंता होए क्या को गर्वे, जहां सब किस तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन कठा कर लिया। तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है, पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसदा अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाई दा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के कोई प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नूं बिठाण लई बनाने हां, अहंकार बैठ जांदा है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया।
सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए। पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नू दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने। अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाथ कृष्ण ने, मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा। दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हाँ खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नू भी मनन नू तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिक है, और हर एक का माण मैं हो जावा, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है। अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां। एक जन्म मरण का कारण बन जाती है तू है तू है तू है। एक जन्म मरण नू मिटा के प्रभु का

इस जप ने तेरा ही रूप बना देता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हा मैं हा मैं हा, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदियां सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, कि तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी की सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू आश्रित है, तू ही है तू ही है तू ही है। उत्थे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते ने, बस तू ही तू ही तू ही। एक आलम का कहना है, अज राह चनार अज राह चुनार, कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच, कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह, कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खुआनंद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनू तेरा जी करे, तो नमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए, और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे छी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे छी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया है सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है, मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक देते असवार होके बैठा है, शायद उसनू मखलूक दे कदमा देच भी जो है ठा ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही होंदे ने। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है, कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ना, गरूर का सर नीचा, आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है, अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नूं तोड़न वास्ते है।

पर अहंकार बड़ा चलाक है। ये धार्मिक साधना नो भी अपना सिंहासन बना देंदा है, बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है।

सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़ंत अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंह ना निकलदा, अहंकारी हां नहीं कर सकता। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़ना भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतनी जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करदा है, ना करके दसना चाहुंदा है मैं तैनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना, हां कहना ही भुल गया। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत आंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सब नू ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़ंत अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार आंदा है, इसे दुश्मनी वधदे। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहिंदे ने,

शरद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमारद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जी तो खुदा दा मिलाप चाहना है। जी किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सोल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नूं उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नूं, जड़ चेतन सब नूं अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारिया नूं मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी धन दसदी है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद। जद उस एक नूं सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जांदी है। जीवन धन हो जाता है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया, दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया। सब मित्र सब को उम्मीद हम आपन कीना, पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारवक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना, साधना विच लीन है। कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है, और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है, और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सरा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई, तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया, दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़ पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु कहण लगा हुण असी इस तरह के चोले पहनना छड़ दिता है, असी तो तन दिते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर राजा कहण लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपके दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेट है, चलो नहीं पाना आप रख लो, दे देना किसी नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिनों बाद इस त्यागी वैरागी साधु का एक मित्र, बूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु से, वो भी तपस्या कर रहा से, मिलन ले आया है। लालवन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल संत की
कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत किया है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदे बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई तीन घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है भी इत्थे कल्लियां बैठे हां, तुसीं तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो। मैं तीन घरां विच जाना है, तुसीं मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो, कस्बे दे चले हां, तुसीं पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गईयां ने, अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है, हैं इतने मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेख देने खैस जिस घर विच जाना सी गए। आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने, क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलक दी है, निर्माणता बिखर दी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है, तो सारे घर वाले उस तों प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुख तो के कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने साधु ने साधना करदे ने बड़े ज्ञानी ने जपीश्वर ने कपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने मेरा है चोला मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा किया, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दा है। खैर माफी मंगण लग पया, कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गया है तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ,
दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले की भी निगाह इस साधु पे, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे से शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला, तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने, रह गई इस चोले की गल, एक चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस देश वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगता है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिए सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नु प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नु देख रहे हैं। सवाल पूछ रहे है, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हों कपड़िया की गल, इस चोले की, मैं इसकी गल नहीं करने, ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता, आख्या तीन दफा तू नंगा कीता है, एले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू लगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरियारी, ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते हैं, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? ते मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने, अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटते ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नु भी पिछे सुटीए, परमात्मा नु भी पिछे सुटीए, और नाकश ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी। नमरूद ने कह दिता सी, कौन हुंदा है खुदा? मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकता, अहंकार जींदा है मैं आश्रित तो ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नु अगे करके, ते बकरे दा बोल है मैं मैं मैं,
ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਖਰ ਬਕਰੇ ਨੇ ਕੀਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਸ ਜਹਾਂ ਮੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर देता, सिर वज देता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

आंद्रा रह गईया, सुट दतिया गईया, बाकी तो सब कुछ कम आ गया, खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां भी पिस गईया, कम विच वर्तियां, केवल आंद्रा बच गईया। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूई पिंज देने धुनकी दे नाल, और धुनकी जिहड़ी तंग लाई जाती है वो बकरे की आंत आउंदी है, अंदर आउंदी है। ले गया नदाफ से धुनकी बनाने के लिए, ये आंदरा ही रह गई सुनो।

लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते हो, उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा, बस उस नाली रूपिंजी जांदी है।

अहंकार तेरे करके ते जीव जम देने मर देने आम देने जान देने दुख भोग देने सुख भोग देने थक जान देने टूट जान देने। ए अहंकार तू के तोड़ के रख देना कईयां नूं ब्रह्म।

कोई बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान विच कोई रमण कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे बूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसी वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनान कर हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, तेरी दवाई है उसके कोल, बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लभनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हूं जी किधरे अंदरों निकले तू इत औषधि होगी, मैं इत रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवे मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा, ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है, और गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है, ये रोग अंदर है तो वैद्य भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर, कह सब कुछ तो ही है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु तू ही है। जितना कहता जाएगा उतना मैं मिटता जाएगा, और जैसे अहंकार पूर्ण तौर पे मिटेगा वैसे निरंकार पूर्ण तौर पे प्रकट हो जाएगा, और तू निरंकार का रूप हो जाएगा, ईश्वर का रूप हो जाएगा। गुर कृपा जाए नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। इस तरह तू प्रभु का रूप हो जाए।

दुख व्यापक है। कहने लगे मैं सहमत नहीं, ये अति उपमा अलंकार है। अति उपमा अलंकार नु इतना स्पष्ट नहीं करीदा जितना तुसी कीता है। मैनू इंज कहण लगा आखिर मनुखी दुनिया च किधरे आनंद भी है, खेड़ा भी है, खुशियां भी हैं, और इसे नु वजाहत करके ते पक्की मोर ला देनी कि नानक दुखिया सब संसार शोभा नहीं देंदा। मैं कह महापुरखो सियाने हो तुसी चिंतक हो और उम्र के लिहाज च वाकई मैं उन्होंने सामने बहुत छोटा सी, और विद्या पढ़ाई चिंतक दे उन्हां दी दुनिया बड़ी अगे सी क्योंकि विचार वटांदरा अक्सर चलता रहिंदा सी। पर इस तरह भी वह हिम्मत कर लेंगे कि सारे च खड़े होके इंज कहणगे। उस दिन मैं उन्हां दी बहबलता देखी बिल्कुल असहमति, कहण लगे नहीं ये दो घंटे तुसी लाया एवें जाया कीते, दुख इतना नहीं है। ये गुरु नानक ने अति उपमा अलंकार वरते है जिसनों तुसी हू बहु सच करके बयान पै करते हो। ये अलंकार है, गहना है, भूषण है, वास्तविक ऐसा नहीं है। मैं कह मैनू ते वास्तविक ऐसा ही दिखाई देता है, और जो गुरु नानक ने आख्या ये अति उपमा अलंकार नहीं है, ये खसम दे बोल ने, ये सत्य वचन ने, ये संपूर्ण वचन ने। अति उपमा अलंकार कल्पना होंदा है, फिर ते गुरबाणी नू कल्पना आखना पड़ेगा। ये कल्पना नहीं है, ये सच है। मैनू कहन लगे थोड़ी श्रद्धा है इस तरह थोथों कहलवा रही है, वरना ये अति उपमा अलंकार है। तो मैं थानू कल सच दा सुख दा स्वरूप दिखावांगा, फिर थोड़ी जबान कबूल कर लेगी कि दुनिया च निरा दुख नहीं सुख भी है। मैं कह ठीक है, अगर इस तरह तुसी प्रत्यक्ष रूप विच कोई सुख दा स्वरूप दिखाओगे तो फिर जरा सोचांगे, जिथे तक मेरा इरादा है मेरी सोचनी है ऐसी नौबत नहीं आवेगी। तुसी इस तरह का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकते। वो हस पे उथे ते उन्हां दी हसी इंज सी जिवें कटाक्ष जिवें तनस वे जिवें मूर्ख कुछ समझदा नहीं। वो जब चला गया यकीन जानो उस दिन सारा दिन रहा मैं भी बेचैन। मैं कि पता नहीं की दिखाएगा की ले आवेगा, किधरे ऐसा ते नहीं कि मैं ही कुछ ज्यादा कह गया ते गल इतनी मैं स्पष्ट ना कर सका। उनिंद्रा किसनों कहने ने नींद का ना आना यह भी मैं उस दिन पता चलिया। मैं रात में नींद भी नहीं पी, दिमाग सोचता ही रहा भाई इन्हें सारे साधुओं के इकट्ठ दे पग लानी है, सियाना बड़ा है, चिंतक बड़ा है, सूझवान है, कई किताबों का लिखारी है, संस्कृत ते फारसी ते अरबी का महापंडित है, ये तो पता नहीं की दिखावेगा और कोई मामूली चीज पेश नहीं करेगा क्योंकि मामूली सोचनी का मनुख ही नहीं है। खैर ज्यों द्यों करके सवेर हुई, कथा का वक्त होया, कथा उत्थे अमृत वेले आउंदी सी, सूरज निकलण तो पहले पहले समाप्ति हो जाती सी। गंगा ते इशनान करके साधु उत्थे ही नितनेम कर लेंदे सन अपना जो कुछ करना है, ते फिर कथा जो है एक तरीके नाल संध्या चलती सी। इन कथा दास ने आरंभ की थी, पर मन उखड़िया हुआ है तो जबान भी उखड़ी हुई है। घंटा जरूर मैं पास किया लेकिन मैं खुद भी नहीं पता कि मैं घंटे च की आख्या। ये भी मेरी उस दिन हालत रही। उस साधु आया जब कोई मैनू 15-20 मिनट बोलदिया हो गए, उसके हाथ च खिड़े हुए गुलाब के फुलों का गुलदस्ता सी, ते मैं सोचिया श्रद्धा तो यह भी गुरु ग्रंथ साहब की पूरी रखता है। एन अमृत वेले सोहने जिहा फुलों का गुलदस्ता लेके आया, मत्था जरूर उसने टेकया, फुल नहीं भेंट किए, अपने हाथ च ही रखे। एन बैठता भी कोने से, बिल्कुल कोने च बैठ गया।